0: रेडियो रेडियो दीदी बहिनी को समय सूचक हो।
1: अहिले मध्याह्न को ठीक 12 बज्यो।

वॉशिंग मशीन में 6 किलो सर्फेक्स मैथे एसी में फ्री इंस्टॉलेशन र 0% ईएमआई नागरिकता भए पुग्छ शर्तहरू लागू हुने छन् ग्लोबल नंबर 1 गूगल टीवी ब्रांड टीसीएल सीजी इलेक्ट्रॉनिक्स

0: ढुक होइन ढुक हुँ प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्सुरेन्सकै अभिकर्ता बनाऊ।
1: प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्सुरेन्स लिमिटेड